0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
8: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Leica Gold par.

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह सहपत साहिब नानक रहन जाई। मुंदा संतोख सरमपत चोली, ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुआरी।

अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: Like a cool. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
4: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर। टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू।

0: Gold Breakfast with Kajal.
1: Minutes past 7 is the time. Wakey, wakey, rise and shine. A very good morning. It is Kajal with you till 10 o'clock on UK's number one Asian retro music station, Leica Gold, Leica Radio Midlands, Leica Radio Birmingham. Starting off with two back-to-back tracks as always and super mega hits from the film Hum Aapke Hain Kaun, Chocolate Lime Juice, Ice Cream Toffee. Itni bhook lagi hai aur subah subah chocolate lime juice ke bare mein baat kar rahe hain. Kya yaar. और फिल्म कुर्बानी से आपने सुना कुर्बानी कुर्बानी किशोर कुमार अनवर और अजीज नाजन की आवाज़ों में ये गीत ऑन द ब्रेकफास्ट शो एज योर 7 o'clock स्टार्टर. क्या है स्टार्टर इसके लिए तो अभी आपने सुना, लेकिन अभी क्या हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक अलग सा लाइक आई वांट से डायलॉग है, एक गीत मैं सुनाना चाह रही हूँ आपको. और बॉलीवुड फ्लैशबैक के लिए आपको यही बताना है मुझे कि ये कौन सा फिल्म से है, हु आर द एक्टर्स इन दिस फिल्म. आई एम नॉट गोना प्ले अ डायलॉग, आई एम गोना प्ले a song and you'll understand why. If I play a dialogue from this film, you'll have so many guesses. You'll get the actors correct, but you'll have so many guesses for their films and it'll be like, nah, they're not this film, it's not that film, it's not this film, because they've done so many films together. So what I'm going to do right now is play you this. Aap bataye hame film ka naam kya hai. Here we go.
0: Bollywood Flashback with Kajal.

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Visit travelhubworld.com.
3: One performer, countless personalities.

0: or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: हमारी रक्षा है वो
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
2: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998।

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
1: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार.
5: योर ब्रेन नाउ, प्ले द गेम नाउ.
6: लाइक रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo, ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe lavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Khawa, madwa ane celebrate karvanu tamaru navu sarnamu.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
3: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
5: Vande Ramam Sadaiva Mariyada Purushottamam Lokanatham Shri Ram Shri Ram.
6: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
7: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
9: Leica Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
10: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: हमारी रक्षक है वो
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
7: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
4: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: 100% प्योर घी मेड यूजिंग अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेसिपी विद रिच अरोमा एंड ऑथेंटिक टेस्ट नो प्रिजर्वेटिव्स जस्ट प्योर गुडनेस कॉल 07344520666
2: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 07777287509
3: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
4: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com limited offer terms and conditions apply
8: up next Ravi Sharma with the Ravi Sharma show on Leica Gold

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में मनोरंजन का पड़ाव। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून एंड वांट टू से थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 21 तारीख। वक्त कितनी तेजी से दौड़ रहा है, हमें पीछे छोड़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे भाई वक्त के साथ। दिल में है एक बात, कहूं तो करार हो, चल और थोड़ा साथ अगर ऐतबार हो। मैं बस इसी ख्याल से मिलने गया उसे, शायद उसे भी आज मेरा इंतजार हो। मैं आ गया फरेब में एक रुत के दोस्त यूं, पतझड़ के बाद आई है शायद बहार हो। घर मान जाए तो ये समझना हुआ नहीं, दिल मानता नहीं है गर दिल में प्यार हो। दौलत का, मोहब्बत का, अकीदत का, हुस्न का, अच्छा नहीं है दोस्त किसी का खुमार हो। ये दिल मेरा है अब भी जब मुंतजिर तेरा, आ लौट के आ दिल, आ लौट के आ दिल पे अगर इख्तियार हो।
2: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: द साइकिल ऑफ लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनास कम्स इन एपिक ट्रू लाइफ एडवेंचर.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
6: Rafta rafta ho mere hasti ka sama ho gaye.
7: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
8: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
0: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.
9: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. गीत सुनवाएंगे हम आपको जरूरी ये प्रायोजित गीत, लेकिन उससे पहले मैंने महसूस किया है कि व्यक्ति का मशीनीकरण हो रहा है. व्यक्ति का क्या, हर काम का मशीनीकरण, मतलब वी आर डिपेंडिंग टू मच ऑन मशीन्स. हर काम मशीन से ले रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस चक्कर में. भाई पहले हम पे करने के लिए लाइन में लगते थे, फिर जब टिल पे जा कर के और टिल पर खड़ी किसी खूबसूरत लड़की से दो चार बातें भी फोड़ लेते थे. नहीं, मेरा मतलब है कि हालचाल राजी खुशी भाई है. और जब वो मुस्कुरा के कहती है अरे रवि शर्मा, क्या बताए साहब, दिल में तड़का सा लगता था. लेकिन अब कार्ड लेके जाओ जी, पे बाय कार्ड, और मशीन के सामने से गुजरो, मत्था पच्ची करो, सब कुछ आपको ही करना है. तो उनकी तो तनख्वाह बच गई, अपना एक्स्ट्रा समय लग गया, और कोई बात करने वाला करने वाली मतलब आजकल साहब मशीनों से. आप पहले ना चाय वाय जो है वो बनवा के पीते थे सामने, वो आपके सामने बनाता था, बनाते हुए बातें करता था और कप बाद में धोता था, भाई कितने काम थे. अब मशीन में कॉइन डालो, चाय निकालो, अब शिकायत भी नहीं कर सकते उसमें. तो भाई चाय में चाहे मीठा कितना भी हो, फिर भी शिकायत कर दो, मीठा कम है भाई, दूध कम है भाई, थोड़ा और डालो. तो इस तरह से ना मतलब बातें फोड़ने का अलग ही मज़ा होता था. वैसे आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहते हैं भाई बचपन में चाय बेची स्टेशन पर. बेची तो हमने भी थी, लेकिन हमें तो किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया. अरे चपरासी बना दो प्रधानमंत्री का यार, किसी मंत्री का नहीं. चाय बेचना बेकार गया, लेकिन अनुभव जो कमाया, अरे वाह साहब. स्टेशन पर चाय बेचने का अंदाज, एक वो ठेली होती थी, एक खंबे के सहारे खड़ी थी, और भाई थी तो वो देवराज की. हम तो उसके लिए काम करते थे थोड़ी बहुत देर के लिए, और रात को जब उसे नींद का झोंका आता और भाई वो सो जाता, तो वो हमारे हवाले कर देता था उस रेहड़ी को. हालांकि जब ट्रेन आती थी तो उसकी आँख खुल जाती थी. और साहब जब ट्रेन आती थी तो रात को 1 बजे 2 बजे उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी. वो आवाज़ लगाता था चाय बेचने के लिए, लेकिन आवाज़ कैसे निकलती थी, चाय लेकिन साहब सुबह जब वो नहा धो के तैयार होके आता था ना, और रेडी अपनी लगाता था, अगरबत्ती जलाता था, और भाई भट्टी जो है तैयार होती थी, उस वक्त ट्रेन आती तो उसकी आवाज में पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती. फिर वो ऐसे बोलता था, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. देखिए साहब, इतना चाय के आसपास रह के भी मैंने चाय की आदत नहीं डाली. यकीन मानिए मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हालांकि स्टाफ में लड़कियां कई बार बना के दी जाती, चाय दी जाती हैं, कॉफ़ी भी दी जाती हैं, भाई उनका मन रखने के लिए पीता ज़रूर, लेकिन एक दो घूंट लेकर के फिर मैं छोड़ देता हूँ, उन्हें नहीं बताना वरना कहीं नाराज़ ना हो जाएं। घर में भी पत्नी चाय बना के देती है, क्योंकि वो खुद पीती है तो मेरे लिए भी बनाती है। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी बनाती हैं। अब पत्नी के सामने अब इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो उसके भी भाई दो तीन, वो मैंने कहा मैं आप ही की चाय में से एक दो घूंट ले लूँगा, लेकिन साहब ये चाय का इतना चर्चा इसलिए हो रहा है आज कि आज भारत में राष्ट्रीय चाय दिवस है, नेशनल टी डे। बताइए, ऐसे में तो भाई पीनी पड़ेगी ना, तो भिजवा दो स्टेशन वाली चाय। रेलवे स्टेशन वाली चाय।
10: अच्छा अच्छा अच्छा चाय।
9: पी लो, ले लो जी, चाय पियो, लेकिन कप धो के जाने पड़ेंगे।

0: brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: तो साहब, आज भारत में है राष्ट्रीय चाय दिवस। लोग कहते हैं कि पहले चाय की इतनी आदत नहीं होती थी हिंदुस्तानियों को, और भाई अंग्रेजों को चाय का स्वाद पड़ा तो उन्होंने लोगों को पहले फ्री में चाय पिलाई ताकि उनको आदत पड़े। और ये आदत जब पड़ जाती है ना साहब, मैं बचा हुआ हूँ, अभी आप पिलाएंगे तो पी लूँगा, लेकिन नानी कही जाती है भाई किसी को, मैं किसी का दिल क्यों तोड़े, चाय से रिश्ते जोड़े, चाय पे बुलाया है, शायद मेरी मम्मी के दिल में ख्याल आया है। देखो चाय कितने काम कराती है, चाय पे लोग सौदेबाजी करते हैं, व्यापार चलाते हैं, चाय पे मीटिंग्स होती हैं, चाय पे रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल तो भाई हम खबरों के साथ जुड़ते हैं, समय हो गया है। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। जापान में एशियन गेम्स के बीच भीषण तूफान का अलर्ट, 300 उड़ानें फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बरसाए बम, तालिबान ने दावा किया है। ट्रंप से बात होने के बाद बोले यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बहुत कुछ बदल सकता है। 13 साल की एक चीनी लड़की ने एशियन गेम्स में बनाया नया रिकॉर्ड, तैराकी में जीता गोल्ड मेडल, 13 ईयर्स ओल्ड। और भाई भारत में राहुल गांधी ने कहा अर्पित का परिवार जानता है कि उस मासूम की क्या गलती थी। भाई ये एक केस है, देखते हैं समाचारों में कितना कुछ आज इसमें उजागर हुआ है। पहले ये खबर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड की अमेरिका को वार्निंग, कहते हैं कि अगला हमला हुआ ना तो दुनिया देखेगी नए हथियार। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करता है तो ऐसे नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्पोक्स पर्सन हुसैनी मोहबी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करेगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। ईरान ने ऐसे हथियार बनाए हैं और उनकी ताकत बढ़ाई है जिनका इस्तेमाल जंग के मौजूदा दौर में नहीं किया गया है। उन्होंने इन हथियारों को ईरान के स्ट्रेटेजिक हथियार बताया जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। हाँ भाई, देख रही है, सोच रही है, कोई धमकी है या कुछ इसके पीछे गहरी गहरी बात भाई मतलब छुपा है। अगली खबर, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे, ये वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक जारी सरकारी बयान में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इनविटेशन पर जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जिनपिंग के दौरे को लेकर के सवाल किए थे। ट्रंप ने इनके जवाब में कहा कि हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं, वो अगले हफ्ते यहाँ होंगे और हमारी बहुत अच्छी बैठक होगी। जापान की राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में भीषण तूफान को लेकर के इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। हमें अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन और बाढ़ के संभावित आशंकित खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। दरअसल ये ताकतवर तूफान डुजवान जापान के पूर्वी किनारे की तरफ बढ़ रहा है, पर इस साल जापान में आने वाला ये 25वां तूफान है। तूफान के असर को देखते हुए करीब 300 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और कई दूसरी ट्रेन सेवाओं को भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। रूस में पार्लियामेंट्री चुनाव के शुरुआती रुझानों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। पता चला है कि पुतिन की पार्टी संसद में 2/3 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने की स्थिति में है। आज सुबह तक 90.43% मतपत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी वोट गिने जा चुके हैं। यूनाइटेड रशिया को 57.86% वोट मिले हैं। भारत से आने वाली खबरों में, कांग्रेस सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM 4-5 सीटें जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में भाई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और अभी से पार्टियां जो है वो कमर कस रही हैं। कहा है कि सरकार बीजेपी की बनवा देती है, पार्टियां तो जीतती हैं वहाँ। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संडे को कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई अकेले बीजेपी को नहीं रोक सकता, सारे इकट्ठे होंगे तो कुछ हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार में भी गैर बीजेपी दलों को, पार्टियों को एक साथ आने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और राज्य में बीजेपी ने गठबंधन वाली सरकार बना दी। अफगानिस्तान के तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि संडे की रात को पाकिस्तानी फौज ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उचित जवाब दिया जाएगा, इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीती रात पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका राज्यों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है। 2 पुरुष मारे गए, 1 महिला भी बताते हैं इनका शिकार हुई, जबकि 2 महिला और 2 पुरुष जख्मी भी हुए हैं। ये सभी लोकल नागरिक हैं। और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि ऐसा हुआ तो 1 लीटर तेल 1,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसा रहा यमन के हूती विद्रोहियों की बढ़ती एक्टिविटीज और सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमलों से पाकिस्तान के लिए तेल इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि तेल की कमी होने की हालत में इसकी कीमत 1,000 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। अमेरिका में गैसोलीन और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर अब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फील्ड पर दिखाई देने लगा है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी बिजनेस ऑनर्स और किसानों से बातचीत के आधार पर बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण पैदा हो रही चुनौतियों को सामने रखा गया है, चैलेंजेस को सामने रखा गया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और वो न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने संडे रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप से होने वाली बैठक बहुत कुछ बदल सकती है, काफी कुछ चेंज हो सकता है। और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट संघ का स्टूडेंट यूनियन के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार देर रात रिएक्ट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने DU स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव घपले से जीता है। आपको बता दें भाई, ये जहां एक तरफ राहुल गांधी स्टूडेंट्स और नौजवानों की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं और वहां पर भाई कुछ कॉमेडियन भी मंच पर जो है कॉमेडी करते हुए मिमिक्री करते हुए नजर आए हैं, वहीं जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट पार्टी यानी स्टूडेंट दल है उसका नाम है। उसका आई थिंक 2 पार्टियां, कांग्रेस की तो NSUI है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी हार हुई है और जो बीजेपी की समर्थित पार्टी है वो है अखिल भारतीय छात्र संघ या स्टूडेंट यूनियन, ABVP कहते हैं उन्हें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसकी जीत हुई है। और भाई आखिर में ये खबर कि सीरिया के उत्तरी इलाके में अलेपो प्रांत के अल-एस शहर में आज सुबह कई धमाके हुए हैं। बताया गया है कि धमाके सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े एक हथियार डिपो में हुए और घटना के बाद इलाके में स्थिति को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: लौटिए संगीत की ओर। गुड मॉर्निंग।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
3: और South Hall Travel का पैगाम है आपके नाम भाई. We are known for competitive holiday deals to Dubai. ये कह रहे हैं South Hall Travel वाले. कहते हैं हमें संपर्क कीजिए अगर आपको दुबई इस तरह से घुमाएं भाई, सैर कराएं कि आज करेंगे. हमारा नंबर है 0208-574-8410. Remember, South Hall Travel is at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: If we keep using water like we do now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Yep, so we need everyone to use 28 litres less water every single day.
6: How? Well, if everyone spent 2 minutes less in the shower, that'd do it.
5: But we're not just talking households, we're talking the water industry and businesses too. Everyone has to do their bit.
4: Cos when we work together,
7: it all adds up.
8: Come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: ये है
9: Laika Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
10: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
11: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: विजिट TravelHubWorld.com.

0: £890 with a 7-year guarantee.
1: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit mirarboiler.com. Terms and conditions apply. Mirar Boiler. Get ready for winter.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
4: और लीजिए साहब अगला गीत सुनवाते हैं आपको, इसमें थोड़ा नशा है कुछ थोड़ा मजा भी है। हमारे स्टाफ में कई हैं, वो चाय का चर्चा अभी तक चल रहा है, वो हमारी कौन है ये अपनी नैना शाह कहती हैं, हम भी चाय के तोड़े हुए हैं मरोड़े हुए हैं, क्या बताएं साहब, कहती हैं इंडिया में सड़क पर वो जो चाय बेचने वाला था उसके यहाँ वहाँ खड़े होकर के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता था। हाँ भाई, हमारे यहाँ जो कॉलेज में कैंटीन थी ना वहाँ बड़ी परेशानी थी, वो चाय वाला हमारा दैया साहब था, वो कहता था मैं तो शर्मा जी अपना ये खोखा बंद करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, कहता है ये स्टूडेंट्स आते हैं ना 30 पैसे में, 30 पैसे की चाय आती थी, 30 पैसे में मुझे अपनी बीवी बना लेते हैं, इतना काम लेते हैं। कहते हैं पंखा चला, अरे दया साहब ये टेबल पे कपड़ा मारो भाई, अखबार मंगवा के दे भाई अखबार, हाँ चाय बना दे 2/3, 2/3 का मतलब है 2 के पैसे देंगे, 3 कप बन जाए 3 आदमी पियेंगे, ऐसी बना देना। और साहब उसके बाद कहते हैं चाय पीने के बाद कहते हैं तो भाई पैसे लिख देना। क्यों क्यों भाई, हाँ चाय तो पी लेकिन मज़ा नहीं आया।

0: जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
1: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाइए और सुनिए थॉट फॉर द डे, आज का विचार। हम इसे कहते हैं चिंतन। आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख हमें सटन से प्रशांत ने भेजा है। प्रशांत कहते हैं, आपका रेडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपका चिंतन हम पसंद करते हैं। आज एक खास दिन है, उस अवसर पर आप इसे चिंतन में शामिल कीजिए। तो प्रशांत जी और सुदीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके नए घर में प्रवेश करने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और भाई, आज का चिंतन वो याद दिला रहे हैं कि आज एक त्यौहार है, और वो ऐसा त्यौहार नहीं भाई ईद, बैसाखी, दिवाली जैसा किसी धर्म से इसका संबंध नहीं, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से इसका संबंध नहीं, सबका त्यौहार है। और त्यौहार का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। सुना है आपने कभी? भाई ये त्यौहार सबके लिए है, सबका है, साझा। लेकिन इसका इनिशिएटिव जापान ने लिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का, जापानीज ये इनिशिएटिव है। और आजकल आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा घंटा, जो घंटी होती है ना, जैसे वो बेल, एक शांति की घंटी, बेल ऑफ पीस, यूएनओ में स्थापित की गई है, कई सालों से है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की सबसे सुंदर और सिंबॉलिक ट्रेडिशंस में ये एक है। और फिर नोट कर लीजिए बहनों भाइयों, आज 21 सितंबर का जो दिन है, इसके संदर्भ में ये इंटरनेशनल डे फॉर द पीस वहां मनाया जा रहा है। कैसे? आज ही के दिन भाई यूनाइटेड नेशंस में वो जो घंटा है बहुत बड़ा, यानी बेल ऑफ पीस है, वो उसको बजाया जाता है साल में एक बार 21 सितंबर को, बिकॉज इट इज अ पीस बेल, इट इज द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर द पीस। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ जापान ने 8 जून 1954 को यूनाइटेड नेशंस को एक ये घंटा, ये बेल जो है, ये भेंट की थी। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह घंटी सिर्फ जापान की नहीं है, इसे बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों के लोगों के से सिक्के और धातु के टुकड़े इकट्ठे किए गए। मोर देन 60 कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट द मेटल पीसेस टू मेक दिस बेल। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आम लोगों और बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी था। इन सारे मेटल्स को, इन सारी धातुओं को पिघलाकर ये घंटी, ये घंटा का हो बनाया गया। और इसलिए जब ये घंटा बजता है तो उसकी आवाज में मानो दुनिया के अनेक देशों की सामूहिक शांति, सांझी शांति की इच्छा सुनाई पड़ती है, अमन चैन की एक तमन्ना मानो पुकार रही हो। और इस भाई घंटे के ऊपर जापानी अक्षरों में एक संदेश भी लिखा है, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव वर्ल्ड पीस, दीर्घायु हो, पूर्ण विश्व शांति, अ कंप्लीट पीस इन द वर्ल्ड। अब जिस लकड़ी के ढांचे में इसको रखा गया है वो एक ट्रेडिशनल जापानी टेंपल जैसा है, और जापानी साइप्रस की लकड़ी से बनाया गया है। और सबसे इमोशनल बात यह है कि 21 सितंबर का दिन जो आज है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस घोषित किया गया है, और इसी मौके पर, यानी आज ही के दिन, वहां ये घंटी बजाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और असेंबली के अध्यक्ष भी इस समारोह में घंटी बजाते हैं। ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटरेस और 81वें महासभा अध्यक्ष
खलीलुर रहमान ने घंटी बजाई थी। ये फॉर्मर भाई लीडर रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सोचिए एक घंटी जिसमें 60 कंट्रीज के लोगों के सिक्के पिघलकर एक हो गए, जुट गए। अब आप उसमें पहचान नहीं सकते कि मेटल का कौन सा हिस्सा कौन से देश का था। और ये घंटी आवाज करती है तो मानो सब मिलकर के बोल रहे हैं। देश भले ही अलग अलग भाषाएं बोलें, लोग अलग अलग धर्मों का पालन करें, संस्कृतियां फॉलो करें, लेकिन ये घंटी बनाने के लिए जब धातुएं पिघली तो इनकी अपनी अलग पहचान नहीं रही, एक हो गई। और जब घंटी बजती है तो उसका पैगाम होता है कि हम अलग हो सकते हैं लेकिन शांति की हमारी इच्छा, हमारी चाहत एक ही है, पीस। शायद यूनाइटेड नेशंस की पीस बेल का ये सबसे बड़ा पैगाम है। पर जरा सोचिए बहनों भाइयों, जिस जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो भयानक दुर्घटना झेली, उसी जापान की ओर से यूनाइटेड नेशंस को शांति की ये घंटी मिली। ये इतिहास और मानवीय आशा दोनों को एक साथ जोड़ती है। भाई देशों में जंग तो आज भी चल रही है, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच हो, और भी कई देशों में छुटपुट संघर्ष जारी हैं। और भाई ये संघर्ष किस चीज को लेकर के, जमीन के टुकड़ों को लेकर, भाषाओं को लेकर, धर्म को लेकर भी झगड़े होते हैं साहब। धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वो वाला नहीं है जिसे तुम मानते हो। ईश्वर एक है पर उसका वो नाम नहीं हो सकता जिसे तुम फॉलो करते हो। जो हम मानते हैं वही ईश्वर है। और जब किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या की जाती है तो कैसे शांति स्थापित हो पाएगी। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर ये मान ले, ईश्वर एक है तो भले ही चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, वो वही है जो तुम्हारा है, वो वही है जो हमारा है। उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। मत पूछो किसी से कि वो हिंदू है या मुसलमान है, बस इतना समझ लो कि वो इंसान है।

0: जगजीत सिंह की आवाज में ये गंभीर चिंतन, ये संदेश आपने सुना। और उससे पहले भाई हमने जो आलेख आज प्रोग्राम में शामिल किया, इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर प्रशांत जी ने सटन से भिजवाया हमें आज का चिंतन, आज का आलेख। उनकी पत्नी सुदीप्ता जी भी, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नए घर में प्रवेश के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती बस है मेरा पैगाम, मुझे जीने दो, जी लेने दो। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर ये चिंतन हमने प्रस्तुत किया। और भाई इसका रिस्पॉन्स देखिए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं। रवि जी सुपर्ब लिख रही हैं, शोभना राय, जगदीश जी बुशी से एक्सीलेंट चिंतन वो कहती हैं, कीर्ति कहती हैं मे देयर बी पीस ऑन द अर्थ, शांति चैन अमन भाईचारा मेल मिलाप, यही तो चाहिए जीने के लिए। थैंक यू जगदीश जी बुशी में। और फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में, रवि भैया बहुत खूबसूरत चिंतन, थैंक यू भाई। नीला चौधरी जी हमारी रेगुलर लिसनर, जय श्री कृष्ण कहती वेरी ट्रू चिंतन एंड वेरी नाइस। विजय मॉरिशस वाले कहती आपका प्रतीक्षण जिंदगी का मंगलमय हो, ये हम दुआ करते हैं। अनुषा राजानी थैंक यू वेरी मच, आप चाय पर टिप्पणी कर रही हैं, आगे जब आज लगता है तो चाय कोई ना कोई पिला ही देगा शर्मा जी को, थैंक यू। एक जमाना था जब मैं भाई वर्ल्ड सर्विस में बीबीसी की वहाँ काम करता था, तो वहाँ चाय पता है कितने की मिलती थी, यकीन नहीं करेंगे आप, वहाँ 6 पैनी की चाय मिलती थी, सब्सिडाइज था, कैंटीन में बहुत कुछ हम वहीं खाते पीते थे, तो 6 पैनी की चाय, हमारा आपस में वहाँ झगड़ा होता था कि आज मैं पिलाऊंगा, आज मैं पिलाऊंगा। तुमने कल पिलाई थी, आज मेरी बारी है भाई, ऐसी चाय मिले तो। लेकिन फिर भी शर्मा जी को चाय बिल्कुल नहीं प्यारी है। हाँ वो क्या कहते हैं, सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए कई बार पीनी पड़ जाती है थोड़ी बहुत। वियना में अनिल जी सुन रहे हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। फारूक मोहम्मद भाई ईस्ट लंदन में हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ चले गए थे फारूक भाई, बहुत दिनों बाद हाजिरी लगवाइए। अनिल सोनी जी थैंक यू। और भरत गंगाराम जी, हंसा वोरा जी, हेतल सोलंकी और कल्पना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा आज का चिंतन, आज का विचार, ये बताते हुए कि भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India, it's an attractive rate. They are giving 127.8 Indian rupees for £1. 127 rupees aur 80 paise. Aaj ka rate, you can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: प्यार का सलाम सिर्फ आपके नाम नहीं है, बंदे ने फोटोकॉपी करा के 40 लोगों को भेजी है। और एक संदेश आया है भाई, ये आप सबके नाम डेफिनेटली आया है। संदेश है, दिस इज अ कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर। एवरी वीकेंड पे होता है ये शाम 8 बजे, एंड वेयर ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कन्यादान था फिल्म का नाम, जिसका गीत लता जी की आवाज में आपने सुना।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Extra podcast update.
0: लाइका एक्स्ट्रा नवाई, जो उस पर हमारा नया एपिसोड आ गया है, एपिसोड नंबर 34, विच इज कॉल्ड मॉडर्न हैरेसमेंट। भाई बड़े तरीके हैं ये हैरेसमेंट के ना, जो हैरेस किए जाते हैं, होस्टेड बाय दीप राजा, और उसके बारे में जानकारी के लिए कैसे उनसे बचा जाए, कैसे उनका मुकाबला किया जाए, दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW, इंडियन इंस्पायरिंग वुमन भाई, और गायत्री शेनॉय, इनसे बात की उन्होंने, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। तो ये भाई जरूर देखिएगा एपिसोड, अवर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन एंड एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service. Service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Cow's choice, 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 07344520666.
8: Cow's choice, pure ghee, har chamach mein, shuddh desi swaad.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Creatives Team Events and Peace Nation UK

0: thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
0: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
1: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7am Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
7: Very good morning. भाई ये चाय पीछा नहीं छोड़ रही है, चाय पीने वाले आ गए हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपने लिए चाय बनाते हैं, अचानक गेस्ट आ जाता है तो आप घोड़ामोली करते हैं। घोड़ामोली क्या होता है, उसी में दो थोड़ा यार थोड़ा पानी और डालो। और कई बार तो मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी में हमारा वो खोखे वाला दैया साहब, वो उसको तो यही कहते थे 2/3 बढ़ा दे। फिर एक दोस्त और आ गया, कहता भाई 2/4 कर दे। बताओ ऐसे से यार, दो और आ गए तो भाई वो जो चाय बनवा रहा था ना कस्टमर, ओरिजिनल कस्टमर कहता है यार तू ऐसा कर, तू रह नहीं दे, हम नहीं पीते चाय भाई, अपने हिस्से में आनी कहाँ है। चाय ऐसी चीज़ है भाई, क्या बताएं। बस मैं तो कहता हूँ गेस्ट आए ना तो आप उसको चाय पिलाओ, वो कौन सी, वो ग्रीन टी। ग्रीन टी उसमें ना मीठा हो ना दूध हो, कुछ भी ना हो, उसके कई फायदे हैं। एक तो बंदे सोचते हैं भाई बड़े ये पढ़े लिखे कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ऐसी चाय पीते हैं, सेहत के लिए जागरूक। दूसरी बात खर्चा कम। तीसरी बात बंदा जो एक बार पिएगा ना मुड़ के नहीं आएगा, बता दें। थैंक यू हमारे जो बेसन साहब हैं, उन्होंने भेजा ये आइडिया कि रवि जी आप आओगे ना तो आपको ऐसी ही चाय पिलाएंगे। थैंक यू जी। चिंतन के प्रशंसक बहुत संदेश भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लो जी चाय हाजिर आपके लिए, थोड़ी नशीली है।

राजेंद्र राज जी, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार कहते हैं, सोमवार की प्यार भरी राम राम, सोमवार की नहीं, राजकुमार की प्यार भरी राम राम।

0: at the Golgappiaan da Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: ये गीत हमें लेकर चलेगा समाचारों की ओर और ये फरमाइश हमें लेकर के चलेगी प्रसाद की ओर। कहते हैं हमारे यहाँ आओ चाय पिलाएंगे आपको, पर हमारे नाम गाना लगाओ। ये चाय का लालच हमें नहीं चलता। प्लेसी प्रसाद में तैसी मीनाक्षी, एक ऐसी भी होना चाहिए ना तैसी के साथ, ऐसी और तैसी, चैताली और कस्तूरी मासी और प्रिया मारिया एनी शंभा, क्या है ये क्या लिखा पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन एस एच ए शंभाली समथिंग समथिंग, ओके पैसे काट लेना इसकी, सही नाम नहीं बोला तुम। दीक्षा हाँ आपके नाम भी थैंक यू, और भाई राजेश भाई एंड हिज फुल टीम सबके नाम, ये गीत मस्ती भरा।

स्वर्गीय मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत हमें पहुंचाएगा खबरों तक। और भाई खबरों में वाल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप जैसे अपराधों के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं, कोर्ट में न्याय मिलेगा, हर क्राउन कोर्ट में एक कमरा अलग से ऐसे केसेस से निपटने के लिए निश्चित किया जाएगा। समाचारों की ओर ये गीत हमें ले चला है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

0: हम तो तेरे आशिक हैं, जबरदस्ती के आशिक हैं, चाहे तो माने या ना माने। भाई बहुत सारी नहीं मानती हैं फिर भी आशिक तो हैं, क्या कर सकते हैं, आशिक है, अपने घर में है, तुम्हें क्या कहते हैं, सोचते हैं क्या चाहते हैं, ठेका थोड़ा दिया सबको बताने का। बैक टू बैक संगीत वही कार्यक्रम के अंतिम दौर में स्वागत है आपका। ये तीसरा घंटा यानी फाइनल आर है मनोरंजन प्रोग्राम का। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ ऐसे ऐसे चटपटे, कुछ अटपटे और कुछ मीठे और कुछ गंभीर गीत लेकर के।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK offering 127.8 rupees for £1 and that's the maximum bhai 127 rupees 80 paise aaj ka rate hai aap bhijwa sakte hain via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app terms and conditions apply
1: State Bank of India UK offers savings products business banking buy to let mortgages and safe deposit lockers visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch T's and C's apply
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
5: Cow's Choice Pure Ghee. Har chamach mein shudh desi swad.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-287-509
9: हमारी रक्षक है वो
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
10: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
12: फ्रॉम साउथॉल ब्रॉडवे टू द लंदन ट्यूब यूके द बिग बैंग ऑफ एंटरटेनमेंट हैज अराइव्ड बिग मूवीज चेक बिगेस्ट ऑफ स्टार्स Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat. Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Oh, look at that bump. You're glowing.
15: Oh, thanks.
14: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
15: Oh, no, not yet.
14: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
16: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
17: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
18: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और लीजिए साहब बता दें आपको कि इस सप्ताह हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. सोचिए जरा वो जिनके बारे में खूब चर्चा है भाई और उनको लाइव सुनने का थोड़ा खर्चा है लेकिन वो आ रही हैं अपना शो लेकर के. वन एंड ओनली मिसेस सुब्रमण्यम. ये कौन है मिसेस सुब्रमण्यम? ओरिजिनल नाम कविता कृष्णमूर्ति. इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. अरे साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जब वो यहाँ आई थी स्टेज शो करने, लाइव देखा था, करीब से उन्हें सुना था, उस वक्त बहुत खूबसूरत सांवली सी लड़की और आवाज़ वही तो पहचान है. नहीं दिल्ली वाली नहीं है. दिल को जलाए, आग लगाए, चेन्नई वाली.

0: कविता कृष्णमूर्ति, वेरी वर्सेटाइल सिंगर भाई। आशा जी के बाद अगर कोई उनकी जगह भरने की कोशिश कर सकता है तो जिसमें वैरायटी ऑफ भाई मूड्स जो वो अपनी आवाज़ में शामिल कर सकती हैं वो कविता जी हैं। और कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके पतिदेव बहुत जाने माने वायलिन वादक हैं और इस सप्ताह वो हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

आपको बता दें पहले सोने की तवीतड़ी क्या होता है, गले में पहनने वाली वो तवीतड़ी होती है, पंजाबी वाले समझ जाते हैं, और भाई जो नहीं समझते मत लेना, जो समझ गए हमें बनवा लेना हस्बैंड से जिद करके कि सोने दी तवीतड़ी चाहिए मैनू का दे वास्ते। हेलो सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी सोने दी तवीतड़ी तेरे गल च पै तेरे गल पै जांदी रहंदी गल नाल लग के तेरे जे।

0: व्हाट अ वॉइस शी वाज ब्लेस्ड विद भाई, नूरजहां, मलका तरन्नम। नूरजहां की आवाज में आपने गीत सुना भाई, इसलिए सुनवाया कि आज वो दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती। यस, 21 सितंबर 1926 में जन्मी थी और 2000 में उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन अपने जीवन काल में बहुत सारे मीठे मीठे गीत वो देकर गई। ये गीत खासकर भाई इसलिए पसंद है, मैं इसको बहुत बार सुन चुका हूँ और एक बार लाइव सुना, लाइव नहीं, नहीं नूरजहां की आवाज़ में नहीं, अपनी नूरजहां हमारे रेडियो में है, एक नूरजहां अनीसा नासिर उनका भी ये फेवरेट सॉन्ग है, तो वो गाती हैं भाई, आज नूरजहां दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती। और किसका जन्मदिन है, बाली भाई तो जिक्र करेंगे, हम भी बताएंगे, हमारे एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। Feel good track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

एक विलेन है। अब भाई विलेन में आमतौर पर गाने नहीं पिक्चराइज होते, वो तो भाई लड़ाई झगड़े छेड़खानियाँ। बस लड़की के साथ किसी विलेन को आपने गाना गाते देखा हो प्यार मोहब्बत में डूब करके, नहीं वो तो लड़की को उठाने वाले होते हैं फिल्म में। गुलशन ग्रोवर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुलशन। कुछ फिल्मों में इतने दमदार रोल हैं गुलशन ग्रोवर के कि आपको लगेगा कि भाई सबसे पावरफुल विलेन दिखाई पड़ते हैं।

सोनू निगम की आवाज और गुलशन ग्रोवर पर पिक्चराइज्ड ये गीत। मेरी जो लास्ट मीटिंग गुलशन ग्रोवर के साथ हुई थी वो मेरे अपने शहर में रोहतक में। मैं घर से विदाई लेकर के एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, फ्लाइट पकड़नी थी, तभी फोन बजा और गुलशन कहता है मुझे पता लगा है कि आप रोहतक में आए हुए हैं, सीधे फिल्म सिटी चले आओ, ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा हूँ आपकी। मैंने कहा फ्लाइट है? कहता फ्लाइट रुकवा देंगे, आप जानते हैं विलेन कुछ भी कर सकता है। समय था फ्लाइट में भाई, बड़ा अच्छा लगा। आपने मेरे शहर में फिल्म सिटी है, अब शूटिंग चलती रहती है वहाँ फिल्मों की। उस दिन गुलशन से मुलाकात करके ब्रेकफास्ट किया साथ में। गुलशन आज आपका बर्थडे भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो ना, तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती. इसे हमेशा याद रखना.
3: काश कोई आ जाए.
1: Catch the brand new show Sayoni starts Wednesday the 23rd of September at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
6: Lot aiye, dholak ki thaap ki taraf. Sangeet ki aur. सुरों की ओर, मस्ती की ओर, सुनाइए सबको, कान खोल के सुन लीजिए सब लोग. लता जी की मधुर आवाज कानों के रास्ते दिल में उतर जाएगी और हमेशा के लिए जम जाएगी, वहीं ठहर जाएगी.

0: और भाई आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो नाच गाना हो, वही मस्ती हो। वैसे पॉलिटिशियंस में बताऊं, आपने नाम सुना हो शायद सतपाल महाराज, ये मेरा ख्याल उत्तराखंड से आते हैं, महात्मा सतपाल महाराज 1951 में जन्मे थे कनखल में हरिद्वार के पास। और भाई वो राजनीति में काफ़ी सफल रहे हैं, हालांकि उनके भाई का तो बहुत नाम हुआ था इसमें अध्यात्म में, पर आज ही महाराजा हरि सिंह का भी जन्म हुआ था 1895 में, कश्मीर के राजा थे। और इसके अलावा भाई नूरजहाँ, गुलशन ग्रोवर, इनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। पर आपके घर परिवार में अगर कोई आज अपना जन्मदिन मना रहा है तो हमारी ओर से ये पैगाम जा रहा है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: नोट कीजिए साहब, रेट्स लेम्फाई के वो एक पाउंड के बदले पाकिस्तानी करेंसी में दे रहे हैं 371.05 रुपीज़, भारतीय करेंसी में इन इंडियन करेंसी 128.27 रुपीज़, बांग्लादेशी करेंसी टकाज 164.26, श्रीलंकन रुपए 442.67, केनियन शिलिंग्स 173.37 एंड मॉरिशन रुपी 63.8 रुपीज फॉर वन पाउंड।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.

0: नीसा नासिर लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
1: बिग शो में सुनिएगा वो गाना उनकी पसंद का सोने दी तभी तेरी। हमारे खान साहब कहते हैं कि जवानी की याद दिला दी वो गाना सुनवा कर। मोहम्मद खान साहब वो गीत आपके नाम किया, क्या याद करेंगे आप भी। और भाई हमारी अरुणा शाह कहती हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा गीत, वो मेरे नाम कर दीजिए। अच्छा, सोने की तवितड़ी सबके नाम करता रहो तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे भाई। सोना सबके नाम, खान साहब के नाम कर दिया, आपके भी नाम कर दिया, और किसी को चाहिए सोने की तवितड़ी शाम को मांगना। और अर्जुन जी आपका संदेश मिल गया, थैंक यू वेरी मच भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को धीरे धीरे हम अब समेटने का कार्यक्रम बनाते हैं क्योंकि बाली भाई आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर, और वो लाएंगे जन्मदिन मनाने वाले सितारों की, फिल्मी सितारों की जानकारी। मैं ये राजनीति की, मैं भाई राजनीति में जो मैंने जिक्र किया सतपाल महाराज का, कणखल में 1951 में वो जन्मे थे, और मैंने कहा एक बाल योगेश्वर नाम के महात्मा होते थे, अध्यात्म में बड़ा नाम कमाया था, वो इन्हीं के परिवार से थे। तो भाई जो जो जन्मदिन मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे।
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: क्योंकि सांस भी कभी।
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साफो ट्रेवल at all protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
14: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
16: Danu 11, 11. Danu Properties.
17: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
18: Have you noticed the way fans shout at football matches?
19: Oh, wake up!
18: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently.

0: at radiocentre.org.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: कड़क हैं भाई, थोड़ी भड़क है इनको, झगड़ा नहीं चाहते। हम चुपचाप जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बिछड़कर भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ, जुदाइयों में तुम्हारे ध्यान रहते हैं। हो वक्त कोई, मुकाबिल कोई, हो बात कोई, मेरे लबों पे तुम्हारे बयान रहते हैं। जो मेरी आंख में रहते हैं रोशनी बनकर, वो बन के दिल में मेरे मेरी जान रहते हैं।
1: राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना है।
0: कहते जाने की बात मत करना, आने की बात करना। कल आएंगे 10 बजे की खबरों के बाद।

माली भाई आएंगे 1 बजे की खबरों के बाद आपका साथ निभाएंगे। रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। हैव ए सुपर्ब डे। बाय बाय।

0: थैंक यू रवि शर्मा जी, बड़ा अच्छा प्यारा गाना था, मैं गुनगुनाने लगा और टाइम हो गया। एनीवे वी आर गोइंग टू डू अ ट्रिब्यूट नाउ, इट्स अ ट्रिब्यूट ऑफ अ ग्रेट मैन दैट
1: Laika Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Laika. This is Laika Gold, Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
0: 34th death anniversary of Tarachand Barjatia.

0: आरती और दोस्ती इन फिल्मों के बाद जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज थी विद होलसम म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, फिर तो इतनी सारी मूवीज आई ब्लॉकबस्टर्स फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शंस, जीवन मृत्यु जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए राखी और धर्मेंद्र, और फिर अमोल पालेकर और जरीना वहाब को चित चोर.
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जैसे मैं कह रहा था, फिल्में आई चित चोर जिसमें अनमोल पारेकर और जरीना वहाब को पहली बार एज अ कपल दिखाया गया. दूसरी फिल्म थी आई थिंक तराना, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को रंजीता के साथ पेयर अप किया गया था. एंड देन गीत गाता चल, जिसमें दे इंट्रोड्यूस्ड सचिन एंड सरिका, द ब्यूटिफुल कपल दे. एंड ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले, और शारदा को फिल्म सूरज में. दूसरी फिल्में जो थी तपस्या, उपहार, पिया का घर, सौदागर और अखियों के झरोंकों से, जिसका आपने अभी गीत सुना, संग बाय हेमलता एंड शैलेंद्र सिंह. सावन को आने दो, नदिया के पार, दूसरी सारी बहुत सारी फिल्में हैं. बट सुपर डुपर हिट्स वन बाय वन वन बाय वन. एंड देन ताराचंद जी ही एनविजन्ड द इनहेरेंट पोटेंशियल विद इन हिज ग्रैंडसन सूरज बरजातिया, उनका ग्रैंडसन राजकुमार, उनका बेटा जो है उसका बेटा. तो ग्रैंडसन सूरज बरजातिया में ही सो लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो ही कंटिन्यूअसली स्टिम्यूलेटेड द ग्रोथ ऑफ यंग सूरज एंड एनकरेज्ड हिम टू इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट अ फिल्म फॉर द राजश्री बैनर. और नतीजा था फिल्म हम आपके हैं कौन. लेकिन पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म. अब देखा जाए तो इतने सालों बाद हिज न्यू मूवी इज कमिंग नाउ, सूरज बरजातिया की ये प्रेम मोल लिया. एंड वो सॉन्ग कल ही रिलीज हुआ. मितुल जी ने बताया मुझे कि कल सॉन्ग रिलीज हुआ. दैट्स सो स्वीट एंड आई थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस. गुड आफ्टरनून बाली, आई हैव रिक्वेस्ट मुकेश जी सॉन्ग फिल्म सोसाइटी अनरिलीज्ड. लेकिन मैं तो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ ना ताराचंद बरजातिया का, और नेक्स्ट आवर में भी दूसरा एक ट्रिब्यूट है. बाय द वे इट्स डीडी. I didn't understand. Oh yeah, Didi. Didi. Dinesh Dinu Datta. Agar mauka mila third hour mein hum karenge gana. Thank you very much for your messages. Aage badhte hain.
1: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
0: And I have news for you. And the news is... Final few days to go to the Diwali story, brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner Leica Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday, 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. Tickets from www.diwalistory.com.
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
6: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: क्या गाया किशोर दा ने, ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द फैमिली ओरिएंटेड फिल्म पिया का घर। फैमिली ओरिएंटेड की बात करते हुए मुझे काजल के गणपति पूजा के बारे में याद आया। मैं सैटरडे गया था वहाँ एंड द म्यूजिक बाय अभिषेक एंड ऑल द वंडरफुल म्यूजिशियंस देयर and Kajal, the way she handled the whole show was absolutely out of this world. It was wonderful meeting Vijay Godori and all the wonderful listeners. Unke naam ye gana.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3391, Indian rupees 128.27, Afghan Afghanis 86.98, Pakistani rupees 370.94, Kenyan shillings 173.39, and Mauritian rupees 63.80.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
7: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है? Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
8: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: हमारी रक्षक है वो।
14: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
15: मुझे जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
14: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
16: नो सॉरी मेट,
17: नो वी डोंट हैव दैट पार्ट।
16: हैव यू ट्राइड डाउन द रोड?
18: वी गेट इट इन बट इट वोंट बी फॉर अ फ्यू डेज।
19: देयर आर सम थिंग्स इन बिजनेस यू कांट कंट्रोल, बट यू कैन स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर वैन्स।

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
3: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट कॉल सोनाजुएलर्स नाउ ऑन 0208 951 0111
4: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

संगीत था रोशन का और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी। पहली फिल्म ऑफ ताराचंद बरजातियाज राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट।

0: मेरा कंप्यूटर भर गया विद ऑल योर मैसेजेस. एंड रानी जी, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सच अ ब्यूटिफुल सच ब्यूटिफुल पंजाबी सॉन्ग्स. एंड एंड वी गॉट कीर्ति एंजॉइंग योर प्रोग्राम एज ऑलवेज. ऐश शर्मा सेज थैंक यू बाली भाई फॉर ए वंडरफुल स्टार्ट टू द लाइफ ऑफ मलिकाए तरन्नुम. सो आगे सुनते जाइएगा, मजा आएगा. किशोर पंड्या जी, क्या बात है, जोरदार. थैंक यू वेरी मच. एंड डी डी, वी शैल कैच अप लेटर ऑन. एंड वी गॉट सलमा जी फ्रॉम मेडस्टोन, विजय गुडोरी, ज्योति एंड गिरीश शाह एंड जयदेव सोनी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द सॉन्ग्स दैट वी हैव playing here. Farida Ghulam Ali, of course, you would be like so elated with all the songs. And Inta Shahab Ji, you're back from Pakistan. Welcome back. And it's so nice to get your messages. And salams and namaste to you. And enjoy this hour of Malika-e Tarannum, Nightingale of the East, Queen of Hearts, Daughter of the Nation, the Nightingale of Punjab. Madam Noor Jahan. She was born on 21st September 1926 in Kasur. Kasur was in Punjab, is in Punjab. Ek Pakistani shahar jahan kai notable people, jane mane log wahan janme the. Ab Kasur is actually south city, it's in the south of Lahore. And the notable people that I manage, naam padhe to main bada khush hua. It was the burial place of Sufi poet Bulle Shah. Wah, namcheen logon ka is gaon ke saath nata hai. Kasur is the birthplace of Bade Ghulam Ali Khan, classical vocalists, and Barkat Ali Khan. उनका भी जन्म इस जगह पे हुआ, कसूर में. यूसुफ खान, दर इज अ पॉपुलर फिल्म जिद्दी, मतलब के एक एक्टर जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्मों में काम किया, यूसुफ खान. एंड फतेह मोहम्मद सियाल, फर्स्ट अहमदी मिशनरी हु वाज सेंट फ्रॉम इंडिया टू यूके. Now, Noor Jahan, Madam Ji, was born as Allah Rakhi Vasai, unka asli naam. And she passed away on 23rd December 2000 in Karachi. Her father, Imdal Ali, and mother, Fateh Bibi, they had 8 children and Noor Jahan was one of them. Inke हस्बैंड्स देखे, स्पाउसेस देखे तो शौकत हुसैन रिजवी, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी 1941 में एंड डिवोर्स्ड इन 1953. 1947 में दोनों पाकिस्तान वापस चले गए थे. एजाज दुरानी, 9 ईयर्स यंगर देन हर, 1959 में जब डिवोर्स हुआ 1953 में, 6 साल के बाद एजाज दुरानी के साथ शादी हुई 1959 में एंड गॉट डिवोर्स्ड इन 1971. एंड शी गॉट 3 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच मैरिज. शौकत हुसैन रिजवी के साथ 3 बच्चे, एजाज दुरानी के साथ 3 बच्चे. एंड देन शी हैड अ फ्यू वंडरफुल रिलेशनशिप्स विद अ क्रिकेटर नजर मोहम्मद एंड एक्टर यूसुफ खान, जिनका नाम मैंने आपको बताया, हु वॉज बोर्न इन कसूर. नाउ शी हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म सॉन्ग्स इन पाकिस्तानी सिनेमा, जॉइंटली हेल्ड विद अहमद रशदी. अहमद रशदी वॉज अ प्लेबैक सिंगर फ्रॉम 1951 टू 1983, एक्टिव एंड रिकॉर्डेड द ऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान. Approximately 5,000 songs for 583 released films. Career dekha jaye to 52 films mein inhone acting ki thi Noor Jahan madam ne, 17 as a child artist. Aur jahan pe acting ki thi Yamla Jatt, विद प्राण. प्राण जी के साथ जब एक्टिंग की थी, शी वॉज अ लिटिल गर्ल एंड ऑब्वियसली शी हैड टू बी स्टैंडिंग ऑन कपल ऑफ ब्रिक्स टू मैच द हाइट विद प्राण साहब. जीनत फिल्म, अनमोल घड़ी, जुगनू, मिर्जा साहिबान वॉज विद त्रिलोक कपूर, दैट्स अ ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज कपूर. फिर पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे 94, दुपट्टा, इंतजार, अनारकली, कोयल, ऑल टुगेदर 52 फिल्म्स एंड 17 एज चाइल्ड आर्टिस्ट लाइक आई सेड. नाउ थिएटर ओनर दीवान सरदारी, ही टुक हर विद फैमिली टू कैलकटा इन होप्स ऑफ डिवेलपिंग मूवी करियर्स फॉर नूर, दैट्स अल्लाह वसई, and older sisters Aidanbai and Haiderbandi, inki to behne. Ab inki career aise shuru hui, she started singing at the age of 6, 1931 mein, traditional folk and popular theater mein. So her father, bless him, he sent her for training to Ustad Ghulam Muhammad and Kajjanbai. Kajjanbai, she was Jahanara Kajjan, स्यूडोनिम अदा उनको कहते थे फॉर पोएट्री, द नाइटिंगेल ऑफ बंगाल. ओ वाओ, शी वाज द लार्क ऑफ हिंदी सिनेमा एंड ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर एंड अ फैशन आइकॉन. ब्यूटिफुल, शी वाज सो ब्यूटिफुल लुकिंग एंड अ ट्रेंड सेटर. सो नेचुरली कज्जन बाई जो इनको ट्रेन कर रही थी, उनकी तरफ से इन्होंने क्लासिकल सिंगिंग भी सीखा और how to look like a fashion icon. And at the age of 11, Noor Jahan started her training in Calcutta, learning traditions of Patiala Gharana, Hindustani classical music and classical forms of Thumri, Draupad and Khayal. She always wanted to do acting and playback singing. So after her vocational training, she pursued her career, singing alongside her sister in Lahore. 1938 mein she returned to Lahore at the age of 12. 1939 mein Ghulam Haider composed songs for Noor Jahan, led to popularity there. 1942 mein 16 saal ki umr mein she played main lead opposite Pran in Khandan. Major success, her first role as an adult. Then she shifted to Bombay with director Sayyed Shaukat Hussain Rizvi, who she later on married till 1953, jab umr thi 27 saal ki, to become one of the biggest film actresses of the Indian film industry. Early film kaun si thi? Badi Ma. Then she shifted to Pakistan 1947 mein with her husband, that's Sayyed Shaukat Hussain Rizvi. Both directed Chanve. Uska gana maine rakha hua hai aapke liye. Together, she became first female film director of Pakistani films, Chanve film mein. And then she was heroine and playback singer in Chanve. And 1952 mein Dupatta was even bigger hit than Chanve. मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट सिंगिंग फॉर हर वॉज नॉट एफर्टलेस बट एन इमोशनली एंड फिजिकली ड्रेनिंग एक्सरसाइज. शी यूज टू पुट हर हार्ट एंड सोल इन टू हर सिंगिंग. यस, द ग्रेट लेडी बोर्न एज अल्लाह रखी वसाई, मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर. I can immediately tell you she was active for 70 years from 1930 to 2000. She got 15 Nigar Awards. What a lady, what a lady. My favorite. Hum kuch gaane sunate hain aapko. Lutf uthaiyega aur Madam Noor Jahan ko yaad kijiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Cow's choice. 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
6: Cow's choice pure ghee.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com, exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
3: I left behind everything I knew.
2: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
3: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
2: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: गुलाम हैदर ने ये कंपोज किया फिल्म खानदान 1942 की फिल्म एंड डी एन मधोक ने लिखा. वी आर एंजॉइंग Noorjahan songs.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: इतनी खूबसूरत आवाज को डिस्टर्ब करना पाप है। कैदी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म, रशीद अत्र का संगीत और फैज अहमद फैज की लिरिक्स। एंड दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट्स आई नो, फरीदा गुलाम अली जी, आपकी नजर।
1: मेरे बचपन के

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: प्रेम कहानी, और चार बजे से ये कहानी जारी रहेगी विद नन अदर देन सरप्राइज सरप्राइज इज गोना बी काजल इन प्लेस ऑफ सैंडी शाह एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इज राजपत्तन
1: जेम इन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट जेम इन फूड्स बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on

0: तवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
1: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
0: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th of November टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट Eventbrite
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
3: The Buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: हमारी रक्षक है वो
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
7: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
9: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575 केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD प्लीज कॉल ऑन 07466997575
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
10: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
14: Bali Brahmbhat on Gold Afternoons.
15: Like a gold.
16: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला जो का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया साला मैं तो सा

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड.
1: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट. 14 डेज कनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ सेप्टेंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208951011.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208767 7627. This is

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24-hour line.

0: will pass it on to Nanny and Grandad.
1: Okay, then.
2: If you have a child in reception to year 11, help protect them with a flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app, or in their bag. Look out for it and complete it. Find out more at nhs.uk/child-flu. Stay strong. Get vaccinated.
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: हैरो इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: माया भाईनी मौजवाणमा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
10: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS।
9: टिकट्स 30, 40 अने 50 pounds। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
10: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 07722875 09।
11: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11, 11.
12: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties.
15: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो ना, तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती।
16: इसे हमेशा याद रखना।
17: काश कोई आ जाए, उन्हें समझाए।
18: Catch the brand new show, Sayoni, starts Wednesday the 23rd of September at 6 p.m. on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
19: Royal Chai लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
21: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
20: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
21: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
22: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
3: Full Drive with Sandy Shah.

0: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
5: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Foods. के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
5: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
7: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए भाई, बहुत सारे और जवाब भी आए और यकीन करें कि सिर्फ एक सही जवाब मुझ तक अभी तक पहुंचाया गया है और वो है संध्या भवसर जी, हमारी क्वीन, हमारी प्रिंसेस, रानी ऑफ द आवर। संध्या जी, वेल डन। ऑनेस्टली सब धोखा खा रहे। मैं आज सोच रही थी घर से निकलते हुए भी रास्ते में, मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने अपने सुनने वालों को चक्कर नहीं दिया, तो आज थोड़ा सा चक्कर देना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे चक्कर में आ गए आप, यानी मेरे फैलाए हुए जाल में मछलियां मछले सभी फंस रहे हैं। अवतारा सी जी, जीशान जी, दीनी जी, ताहिर जी, चौधरी फरीद अहमद जी, रुखसाना अफजल जी, विजय गुडोरी जी, मीनाक्षी जी, अंजू जी, सबका सेम ही जवाब। और वैसे जिस तरह मैं मिसलीड कर रही हूँ आपको, उसके हिसाब से आप सही बता रहे, लेकिन ये जवाब नहीं है। जवाब वो सही है जो हमें भिजवाया है संध्या भावसर जी आपने, वेल डन। लीजिए एक पैगाम आपके साथ शेयर करें, उसके बाद अगला गीत, और फिर जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं अब उनको तो मैं कहीं नहीं कहूँगी कि ट्राई करें, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी जो आप तक लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स अवेलेबल एट diwalistory.com। जल्दी से बंदोबस्त कर लीजिए।
0: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Breakfast for London at Breakfast and Drive. This is Anissa Nesser with The Big Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
6: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
11: We're finally going home for the wedding.
12: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
13: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका गोल ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: और अब तक मेरे सुनने वालों की दिल की बात जो जुबान तक आई है, तहरीर की सूरत में मुझ तक पहुंची है, वो कुछ ठीक नहीं लगी मुझको। जान सारों को तेरे कब ये खबर थी कि तुझे दिल से चाहेंगे, निभाएंगे, पशेमा होंगे। लेकिन पशेमा होने की ज़रूरत ही नहीं, आप कोशिशें कर रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं। वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि हम दोनों ही नाकाम रहे मोहब्बत में, वो मुझको चाह ना सका, मैं उसे भुला ना सका। वही वाली सिचुएशन है। श्वेता जी, गीता हर्षद जोशी जी, इरफान जी, अजिंक्या जी, मनजीत संगर जी, रेणुका जी, उमर जी दुबई से, तारिक राहिल जी, आबिद जी, प्रुथा भवे जी, नौशीन खान जी, फायजा खान जी, अरुणा जी, अमिता जी, अब तक तो रानियों की तरह यूं सज धज के सिर्फ और सिर्फ संध्या भावसर जी बैठी हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 370.3 Pakistani rupees, 128 Indian rupees, 86.6 Afghan afghani, 163.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: और मैं हमेशा कहती हूँ कि गीतों में कुछ भी कॉमन हो सकता है। आप सब के सब सिर्फ और सिर्फ वर्ड ढूंढने में लगे हुए।
2: Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury, and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.62 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow, or Crowley.
0: और भी वो जो दुनिया में कहते हैं ना कि अच्छे लोग कम हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में दुनिया में ज़्यादातर अच्छे लोग ही हैं। एमरशम में लास्ट बल्कि दिस वीकेंड मेरी मुलाकात हुई बहुत ही प्यारी प्यारी लेडीज से, और व्हाट अ लवली क्राउड, ईच एंड एवरीवन सो लविंग, सो वॉर्म, माशाल्लाह से। थैंक यू सो वेरी मच। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिफत कुरैशी जी का, डॉक्टर जरका जी का। रिफत जी कहती हैं, बहुत सालों से मेरा एक अरमान था कि हमारे इस एरिया में आप आकर जो है वो होस्ट करें, और मुझे जब भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो कोई ना कोई मसरूफियत ऐसी रही कि हमारा मिलाप नहीं हो सका, और अब जो हुआ तो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। रिफत कुरैशी जी, तहे दिल से मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, एंड ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन आई मेट देयर हमेशा याद रहेंगे, बहुत प्यारे लोग, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हेलो हाय आप सभी के लिए। हाँ जी, क्या कॉमन है गीतों में?
2: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.

0: हम दोनों।
1: और इस दिल लगी को दिल की लगी मत बना लीजिएगा। रीटा जी, सरोज जोशी जी, जगजीत संगर जी, दिनेश जी, पूनी जी, तोची जी, सईदा जी, आपके जवाब बात भी गलत हैं। संध्या भावसर जी के बाद बहुत बाद मनु जी आपका जवाब सही। उल्लास जी, निलेश जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी और अंजुम जी, वेल डन। आज किशोरदा कॉमन थे गीतों में, भाई आप वर्ड्स के पीछे लगे रहे और आपने ये नहीं देखा कि सब बदलते रहे लेकिन किशोरदा वहीं जमे रहे, टिके रहे, तो वो कॉमन होंगे ना। लेकिन मैंने भी थोड़ी चालाकी की और आपको अल्फाज में उलझाने की कोशिश की, ऐसे गीत शामिल

कि जिसमें हुस्न की तारीफ थी, बस यही तो बात है ना, यही तो इस चक्कर में नहीं आना होता, चक्कर के बाहर रहना होता, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राइड. थैंक यू वेरी मच. किशोरदा की आवाज़ में गीत सुनते हुए चलते हैं न्यूज़ की जानेब. गुड इवनिंग.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kamal hai Shugufta ji, wo apne unke bare mein tafseel se bata rahi hain ki paan khaye se yahan maro. Aap ke liye mazahiya gana hai. वैसे है थोड़ा सा है. आपके नाम कर दूं? बेहद शुक्रिया मैसेज भिजवाने के लिए. और अब एक मैसेज मैं भी आप तक पहुंचा दूं.
0: This is like a gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel is known for its competitive holiday deals for Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही on 0085748410 पर. Southall Travel is ATOL protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: और लीजिए एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा देती हूँ अल्फाज को. बेगाना सा दीवाना सा जब शाम ढले. और मुझे पता था सईदा जी, मुझे पता था अगर आप नहीं तो कोई ना कोई ये ज़रूर भिजवाएगा. फरमाती हैं गाना है जब शाम ढले, और फिर शर्मा की मूवी छुपा रही हैं. पता है कि गलत जवाब दिया, लेकिन सच्ची में सईदा जी आई लव यू फॉर दैट. आप हमेशा ट्राई करते हो, आप कहते हो कि चाहे गलत ही हो जाए मैंने भिजवाना जरूर है. दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली.
0: दिस इज अनीसा नासिर ऑन लाइक अ गोल्ड ग्रेटर लंदन.

0: है लाइका गोल्ड। अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: लीजिए आपको बता दें लाइका एक्स्ट्रा न्यू पॉडकास्ट, जी हाँ, उनकी एपिसोड 34 जिसमें दीप राजा जी विल बी टॉकिंग टू संगीता पांडे। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है, आप हर एपिसोड देख सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा, Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
6: Oh, terrible weather.
5: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
7: See ya, good luck with the interview.
6: Thank you, bye.
5: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK North Holt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
9: हमारी रक्षक है वो।
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
10: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन Instagram।
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Jaimin Food के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जैमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: लाइक रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन। Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: रंग निकहत निखार नूर जहां, रंग निकहत निखार नूर जहां, पुरकशिश पुरवकार नूर जहां, अंदली बेचमन सदाए वतन, खूबिये सद हजार नूर जहां, वन एंड ओनली मलिका तरन्नुम। एक ही थी, एक ही हैं और एक ही रहेंगी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मुझे जहां जहां मौका मिलेगा मैं उनके गाए हुए गीत आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे सोज में तबस्सुम, मेरी आह में तरन्नुम, और इसका सही बयान, इस लफाजी का, इनमें फीलिंग भरने का, वो सिर्फ और सिर्फ मैडम ही कर सकती थी।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound आज आपको दिला सकता है 128 Indian rupees, 370.6 और Pakistani rupees 86.6, Afghani 164 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LAIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
3: Punjabi Torka with Anissa.

0: तुम्हें एक नया अंदाज, हर नगमे में एक अजीब सी नगमगी जो बहुत कम लोगों के आवाज में मिली या मिला करती है। जिंदगी के हर रूप को अपनी आवाज के जरिए हमारे कानों तक पहुंचाया। बेशुमार गाया लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत कम गाया। गीतों को गजलों को अमर बना देने वाली फैज जी की नज्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, उन्होंने ओन की। फैज जी ने कह दिया खुद ही कि इस नज्म को मुझसे कोई मंसूब ना करे। इस पर सिर्फ और सिर्फ नूरजहां जी का हक है, क्योंकि उन्होंने उनके अल्फाज का जो हक अदा किया उसे इस तरह से गाकर। एक जमाने में फैज जी थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ कुछ अनबन में थे और शायद जेल में थे। उस वक्त एक इवेंट में मलिका तरन्नुम नूरजहां जी को बुलाया गया, उनको परफॉर्म करना था, गाना था, और उन्हें ख़ास तौर पर कहा गया कि फैज जी का कलाम तो आप नहीं गाएंगी। उन्होंने कहा अगर मैं फैज जी का कलाम नहीं गाऊंगी तो मुझे गाना ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, उन्होंने ना सिर्फ गाया बल्कि फैज जी का कलाम भी लहरा लहरा कर गाया। उनके इस जिद के आगे ऑर्गेनाइजर्स को घुटने टेकने पड़े। ये थी वो बुलंद किरदार और मेहनती, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने और ये उनकी मेहनतों का ही सिला है कि आज उनके 100th बर्थडे अगर वो इस दुनिया में होती तो मना रही होती। ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई सौ सालों तक उनको याद किया जाएगा, इसी तरह से चाहा जाएगा, इसी तरह से सराहा जाएगा इंशाल्लाह।
1: This is Anisa Nasir with the Big Show. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Harrow, famous Spice Village is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends and taste the award-winning flavor of Spice Village. Find us at 1-4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Your new place to eat, meet and celebrate.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: फ्रॉम साउथ ऑफ ब्रॉडवे टू द London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
2: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
7: Anissa Nasir with the big show, weeknights from 7 p.m.

क्या बात है इस गीत की। ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा, जिसे सबसे पहले पूछा बूझा एजाज जी आपने, यू आर द राजा ऑफ द आवर, अजिंकिया जी, उल्लास जी, गीता हर्षद जोशी जी, आपके जवाब सही थे। सईदा जी और संध्या भावसर जी ने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, सो दैट्स फाइन, एटलीस्ट आपने कोशिश की। अब जब मलका तरन्नुम नूर जहां जी की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या सुनूं, नगमा, गीत, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, क्या सुनना चाहेंगे आप। चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद को जहन में रखते हुए कुछ ऐसी चीजें शामिल करूं जो आप सबको पसंद आए। और आप मुझे बता रहे हैं कि बाली जी ने आज बहुत बहुत बहुत प्यारा ट्रिब्यूट जो है वो मलिका तरन्नुम नूरजहां जी को दिया, तो आपकी तरफ से आपने यकीनन ख़ुद भी उन्हें बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स भेजे होंगे, लेकिन मैं भी आपका प्यार उन तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। बाली जी कमाल करते हैं हमेशा ही, तो आज कैसे नहीं करते। थैंक यू सो वेरी मच बाली जी। और मैं चंद नगमात मलिका तरन्नुम जी के आप तक पहुँचाऊँगी, सुनते रहिएगा।

0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत और उनके गाए हुए गीतों का बेशुमार खजाना जो है हमारे पास मौजूद है। लाइव परफॉर्म करने के लिए भी वो तशरीफ़ ला रही हैं दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जाएंगे, पहुंचेंगे उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए। लीजिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे मलिक ए तरन्नुम जी के गाए हुए बहुत सारे गीत। वैसे थोड़ी सी एक बात मैं छोटी सी कहना चाहिए आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सादत हसन मंटो जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नूरे जहाँ सुरूरे जहाँ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के वाकयात जो हैं वो बड़े तफसील से कलमबंद किए हैं। तो अगर कभी आपको मौका मिले वो किताब पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िएगा। एक छोटी सी बात उसमें ये की है, रफ़ीक गजनवी साहब बहुत बड़े फ़ैन थे मलिक ए तरन्नुम नूरजहाँ जी के। एक्चुअली सादत हसन मंटो जी से नूरजहाँ का तारुफ उन्होंने ही करवाया था, और जानते हैं क्या कह के करवाया था, मंटो ये नूर है, नूरे जहाँ है, सुरूरे जहाँ है, खुदा की कसम ऐसी आवाज़ पाई है कि अगर जन्नत की खुशलहान से खुशलहान हूर भी इसकी आवाज़ सुन ले तो इसे सिंदूर खिलाने के लिए जमीन पे उतर आए।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Anda tere le reshmi rumal te utte tera na kadya ve main badhiya hi chawana निक्के होंदियां दा प्यार 1969 की फिल्म और फिल्म में ये गीत पिक्चराइज हुआ था बहुत ही प्यारी बहुत ही अपने वक्त की जानी मानी नगमाची पर। लीजिए अब एक मैसेज आप सभी के नाम।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: बिल्कुल बेशक करते हैं और आपका दिल बहलाते हैं और एक पैगाम और है मेरे पास। जैसे कि अभी अभी मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी का गीत सुनवाया तो आपको बताया कि द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करेंगी लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स and it's as a Diwali special aapke liye tohfa hai tickets from the venue box office exclusive radio partners Laika Radio Network.
0: This is Anisa Nasir with a big show.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
6: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: विजिट TravelHubWorld.com
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
9: ये तो बताओ कोई पता चला
10: गुरु गुरु
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
9: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए शुभ से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November टू बुक कॉल 0208-514-5400 Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
13: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Non-stop classics. Classics. Like a gold.
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta hai 128 Indian rupees, 86.6 Afghanistani, 370.5 Pakistani rupees, 164 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £104.43 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: बातें बहुत सारी हैं शेयर करने को, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके गाए हुए गीत जो है वो आपके कानों तक पहुंचाऊं। लेकिन एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूंगी कि 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में, जिसमें मल्लिका तरन्नुम नूरजहां जी ने मेन किरदार अदा किया, उस फिल्म में लता जी और आशा जी बचपने के किरदार में थी। और 1945 में नूरजहां जी ने पहली बार जोहरा बाई अम्बाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली गाई, और जनूबी एशिया में पहली बार ख्वातीन ने कवाली गाई थी। कवाली आपको याद है? अफसोस के मैं नहीं सुनवा पाऊंगी, लेकिन कवाली के बोल थे, आहें भरी न शिकवे किए। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत उनका गाया हुआ जो कि हसबे हाल भी है, गाएगी दुनिया गीत मेरे, आज तक गा रही है और गाती रहेगी।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: From Lollywood with love, with Anissa.

0: और बिल्कुल सही कहा था, फरमाया था लिखने वाले लिरिसिस्ट जनाब तनवीर नकवी जी ने. रशीद अत्री जी का म्यूजिक, मौसिकार फिल्म 1962 की फिल्म सबिया खानम जी पर पिक्चराइज ये गीत. और वाकई विजय जी आपने सही कहा, इससे ज़्यादा मुनासिब कोई गीत नहीं हो सकता उनके लिए कि गाएगी दुनिया गीत उनके. बेहद शुक्रिया आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए. मैं सारे शामिल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब आखिरी ये जो तीन गीत हैं, मैं चाहती हूँ कि बग़ैर किसी इंटरप्शन के आप इन्हें इंजॉय कीजिए. बशर्ते ज़िंदगी में कल मिलती हूँ. शब बख़ैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले.
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410, 0208 574 8410. Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
4: हमारी रक्षक है वो.
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
5: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. डैनी प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन.
8: Danube 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: लाइका गोल्ड। This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: फंक्शन रखा हुआ है।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
2: डेजर्ट सफारी,
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न घूमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: Once every week, get the message. See radio differently at radiocenter.org.
1: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर
2: ना तो आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया फिर भी मोरे जिया रम चमके अरे थम थम कोई बिझुरिया
3: वाह वाह वाह तुहार जवाब नाही